0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ॾिसो ॾिसो केॾा भला भला गाना ॿुधायां जी बताइए जनाब और हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में. तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके साथ साथ है. बिल्कुल जनाब से प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप लोगों का माइंड सेट हो, आप लोगों का जहन जो है वो क्लियर हो कि आप अपने लिए कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों की स्किन के ऊपर सूट करेगा. तो जिन लोगों के चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है और सेंसिटिव स्किन वाले लोग जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम को. और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव लोग ही लगा पाएंगे, भाई इसे सारे लोग ही लगाएंगे. यानी कि स्किन किसी भी टोन की हो आप जी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम लगाइएगा. उसके अलावा आपको मिल जाएगा जी डी स्किन का फेस वॉश भी. तो साथ में दोनों चीजें इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को निखार मिले, वो भी बहुत अच्छा बहुत शानदार क्वालिटी का. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है. तो लाजमी ट्राई कीजिए, आपको मजे आ जाएंगे.

चौकीजी डिंका वरी जिद्दी वाह वाह डाडो भलो गानो हो बुधो सी ना खलावा हीकड़ो गानो आया सांजी लिस्ट में सो हिना के बुधंदा सी वात पट्टी सी व्या वरी लाई छा छा सो अचो बुधो ता ओके जी किशोर भाई लिखते हैं कि हमने कब कहा वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब कहा वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए जो आंखों का गुजारा हो जाए। आए हाय।

जी बिल्कुल बिल्कुल डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी दिसो। अच्छा मूसा कोरी भाई कहते वाह वाह वाह वाह वाह जुगानो हलाए तो वर्दी। नसरुल्ला भाई कहते हैं शहर भाई हम तो फेस वॉश दिसा वठी इंद मता मिली वने मिली वेंदो मिली वेंदो तमा लाजमी वठजो। अली डनो शमरानी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मदीना मुनव्वरा सी आप हमारा शो सुन रहे कहते कैसी हैं मैं ठीक हूं जी आप बताएं आप कैसे हैं। अच्छा टॉपिक थे एफ क्यू तू समझा ना बाबा यो असा कोन असा ने वड़ा भी कोन समझी सका। मां तमाम सोचने की कोशिश कई पर मुझी सोच इतने कोन पहुंची। जिनजा तमाम फैन आयो ना नालो तो ए सा स्टार्ट थी सो एफ परी केड़ा। हाँ भाई विचारो किस्मत से फरमाइश कंदो आ सुन करे मान रखनो पंदो आ। अनवर भाई कहते मु समझो सिद्रा सिद्रा पई टहक दे न माई हुई विचारी। अच्छा हेपी कहती है आज आप हमसे सवाल पूछ रही है हम सब ने जवाब दिया अब आप बताएं आप सवाल का जवाब क्या देना चाहेंगी।

वैसे इहो कॾहिं कॾहिं मुंहिंजे ज़हन में इहो ख़्याल ईंदो आहे जॾहिं मूंखे लॻंदो आहे त बाबा मुंहिंजी लाइफ केतिरी मुश्किल आहे या केॾो कुझु डिफिकल्ट हले पियो मुंहिंजे ज़िंदगी में, ईअं कॾहिं कॾहिं मूंखे जॾहिं फील थींदो आहे सो मां सोचींदी आहियां त ई हुन जी ज़िंदगी में जेकर ईअं हुजे असां हलिया वञूं बसि ज़िंदगी एक्सचेंज करण जो सीन जेको हुजे ऑन हुजे, पोइ मां सोचींदी आहियां वरी कॾहिं कॾहिं माण्हुनि खे ॾिसंदी आहियां या सोशल मीडिया ते अॼुकल्ह सभु कुझु ॾिसो था खुलम खुला आहे, सो उन्हनि खे वरी ॾिसी करे असांखे महसूसु थींदो त बाबा हीउ त असां खां वधीक आहे, झटि लॻो पियो आहे जहान सो असांजी ज़िंदगी हुननि खां करोड़ भेरा भली आहे, ईअं न बिल्कुल से कहिड़े बि हाल में अलाह रखे बसि शुक्र अदा करणु घुर्जे। रिज़वान कहते हैं कि हर दर्द दिल दे जाया करो खामोशी के साथ, हम अपनों को नवाजिश ठहराया नहीं करते। वाह वाह, डे स्किन ब्यूटी क्रीम भी बैठो बाबा। ममताज अली कहते हैं चांद सा चेहरा कातिल आंखें और रेशमी जुल्फे देखे तेरे हों। अच्छा मास्टर मंजू जो गानो तां बुधो नी तांखे पसंद आयो दोस्तों, थैंक यू सो मच तां से गड आयो। अब्दुल गफार भाई खुश आमदीद, हेलो। अली मुर्तजा कहते हैं सलाम गुड आफ्टरनून, आऊं भी अच्छी वयम रिक्वेस्ट हुए कोन हलाइंदा वरी कंदम तो कुछ माणन के इतराज थिंदो सो शाम वारे शो में उधार रही यू डे। ओके ओके सही हाँ मन तुम सजे प्रोग्राम जो माहौल समझी वे आयो ये न चाही सकजे तो। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं ओके ओके सो ही वारो गानो असा बुधोसी, हाणे असा ही वारो गानो बुधंदासी। कामी शाह जी आवाज़ में गानो अथव, मां भी अॼु ही पहिरियों हलायो

अलाह हकीकत ॿुधाए मूंखे अहिड़ा गाना वणंदा आहिनि भले दुख जा हुजनि कहिड़ा हुजनि पर हुनजो म्यूज़िक भलो हुजणु घुरिजे इहो शर्त आहे हिकिड़ो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कोन ॿुधायो त ख़बर त पवे अच्छा वरियाम हमारे साथ हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड लवली सॉन्ग थैंक यू वरियाम अच्छा ये है अब कहाँ जरूरत हाथों में पत्थर उठाने की तोड़ने वाले तो जबान से ही दिल तोड़ दिया करते हैं राम नौशीन न सिद्रा मेरा सॉन्ग प्ले करो ना जानी बताया तो इंडियन गाने नहीं लगाते अस्सलाम वालेकुम बाजी सुठी मिठी लाइफ कीअं पई गुज़रे गंबट शरीफ खां अली लाजवाब आहे तव्हांजो शो साइमा मंज़ूर जो गानो हलायो मुंहिंजो गानो तव्हांखे भाउ सुभाणे ॿुधाईंदासीं त अॼु प्रोग्राम जो टाइम ख़तम थियण ते पहुतो आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कई कोन गंबट में मिले थी कोन

अच्छा बक्तली सियाल भाई हेलो किशोर भाई कहते हैं कल शाम 5 बजे वाले शो जी लास्ट लिंक 8-10 दफा बुधी मन भरजे ही न तुझे शो में 5 गानो बुधन जो मजो ही अलग आला दिसो दिसो तदी माना ही मानो रोज रोज गाने जी फरमाश कंदा नी वासु भाई आ चुके हैं वासु भाई हेलो अच्छा अली मुर्तजा कहते हैं चाचा खालिद अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं एक आप ही हो तो इस एज में भी हाँ जी खुश मिजाज तो हैं चाचा वाके कहते असान जा कुराड़ा त इन उम्र में हाई बीपी जा पेशेंट असान के या दवा बिल्कुल सही गाल कर चाचो मतलब पांची जिंदगी के एंजॉय करे पे चाचो मस्त मलंग मानू आहे एंजॉय कयो चाचा बिल्कुल माता सा गडो असा वारा कुराड़ा वाके रोगो कावड़ कंदा है उनन के बाबा बुधरायो रेडियो मुजो प्रोग्राम जो दस दियोस उनन के भी चाचे जड़ो करे चली दासे

ராத்து டி ரூபா பாக்க நின்று சேர்க்க கபூல் நீ கியா ஜாயேகா அக்தர் அலி சிந்தி ஹமே சுன் ரஹி வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம் भाई तुम लास्ट में आया असें प्रोग्राम में सो तुम मोहब्बत आन बाबा प्रोग्राम के पसंद करना है आई उन अलावा पोस्ट के लाइक शेयर कर जिन मानो अना तीन को है एम अंसारी कहते हैं दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है हाँ बाबा ये लगे तो अजकल असा और उन हाने असने प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक हलाइंदे जो यकीनन चाचे जी पसंद जो गानो हों सो हि गानो भी इंजॉय कदी अस टाइम जो टेम बाबा सवा वही अलाइन खिल ही है सो बिल्कुल तुम भी अगर अना तीन सोचो पाया डी स्किन ब्यूटी क्रीम को वती अव तो बाबा टेम को जल्दी वनो वी चो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाँच करीबी जन स्टोर से अवेलेबल लाजमी करा वेंदे वेंदे तक नंबर बुधाई वेंदम जिन मानो नंबर अना तीन को डायल कर नंबर से कौन राबो कर सकया तो नंबर नोट करी वो नंबर है जनाब 03 12 50 25 9 07 बो नंबर है 0332738 4309 ये नंबर तुम डायल करो पारे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो चाहे वह डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए डी स्किन जो फेस वॉश हुए या वरी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हुए व्हाइट एज लवली क्रीम हुए डॉक्टर पिंपल ट्यूब हुए व्हाइट एज जो साबुन हुए या व्हाइट एज जो फेस वॉश हुए ये सब प्रोडक्ट्स तुम जो सो अवेलेबल कराए सको था वो आराम से तवा मिली वा तुम इस्तेमाल कर सब सुना थी वा।

अच्छा नौशीन, आप मुझे कहाँ से सुन रही हैं ये भी बताइए। कहते हैं 5 बजे वाला शो हमारे यहाँ नहीं चलता भाई। 5 बजे वाला शो सिर्फ लाड़काना वालों के लिए है। लाड़काने वाला डाढ़ा वाला खुश नजीर पर का गल ना तो फेसबुक से लाइव ही ना तो फेसबुक तो आराम से बोधी सको था सही।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।
4: हाय हाय हाय।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: जियो सिंधी।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।